0: छुड़ावा पार कूड़ बोल करे आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर।
1: मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाई।

सुचे अगे रखण कोई ना पिटो जाए, सुचा होके जे वे लगा पण सलोक को हथी जाई सटिया की सो लगा दो। अन देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लूं पंजवा पाया किरता हो पाक पवित्र पापी सोतन गड्या।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जिया आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास शब्द चौंकी आसा दीवार दे

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह चल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान सहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जे सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिट है खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन जे सतगुर सिमरंत जीव की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जे सतगुर लग प्रभ पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु पांत बचावै सत्र नेक चलावत काव तौ तन एक न लागन पावै राखत है अपनो कर दै कर पाप संभू न भेटन पावै

सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशादशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशादशाह जिस पास बैठे

कीर्तियावका सदका सब सुखोवै जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षी आर्यायत देव देव फतेह गुरु की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा।

ते मुख उजले केते छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

है, तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जीय तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एक पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ, त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावह मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी, तू सबनी त्याया। जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना यह सोई जन जाने,
हर गुण सद ही आखे वखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। ही आखे वखाणै जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही।

या पंक जो मोह पग नहीं चले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगधा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पही परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म बृथा जात रंग माया कै रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दे मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बद कियो।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाई पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत।

की फतेह। बोल जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती समरकै गुर नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया, हठिया जापिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब

हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी, हर नाम त्याई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात, तेन हाओ कुरबैणी। जिन सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तेन जान देखा नैणी। हौ वारिया अपने गुरु कौ, जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। गोयलड़ा दिन चार गुरमुख जानिया, मंजी लै मेहवार चोज विडाणिया। वरसै निजर तार अमृत वाणिया। वंजलिया चीघार मजलस माणिया। गावण माज मलार सुगड़ सुजाणिया। हौ मैं विच हौ मार मान वस आणिया। गुरमुख शबद विचार सच सिंजाणिया। गुरमुख पर उपकारी विरला आया, गुरमुख सुख फल पाए आप गवाया। गुरमुख साखी शब्द सिख सुनाया। गुरमुख शब्द विचार सच कमाया। सच हृदय मोह सच सच सुहाया। गुरमुख जन्म सवार जगत तराया। सच हृदय मोह सच सच सुहाया। गुरमुख जन्म सवार जगत तराया। सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सहाद साहु। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सहाद साहु। जिस पास

केती छुट्टी ना, केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेविया, अहनस सहज

आप सहाई हो। सच्चे दा सच्चा टोआ, तेरी भगत वड्याई, भाई नानक प्रभ शरणाई। आप सहाई होआ, सच्चे दा सच्चा टोआ, तेरी भगत वड्याई, भाई नानक प्रभ शरणाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विश्वे चस्या घड़ियां पहरा, थिती वारी माहो होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कीते वेस। फिरत फिरत प्रवाया, परया तौ शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। पादे परम पुलाणिया, दूजै लगा हेत, लख सिगार बनाया, कारज नाहीं केत। पादे परम पुलाणिया, दूजै लगा हेत, लख सिगार बनाया, कारज नाहीं केत। जित दिन देह बिनससी, तित वेले कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसे ना देनी भेत। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होआ सेत। जेहा बीजे सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। से पाद नरक ना पाई है, गोर

चरण बोहेथ प्रावदेत से पद नरक न पाई है गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तरन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरुदयाल है पै दुख विनाशन है भगत बशल अनाथ नाथे सर नानक पुरख चुत है। बिलावल महला पंजवा ताती बो न लग गई पार बहम शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम लाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पे सहाय। सोहिला राग गौड़ी दीपकी महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जयकर कीर्ताखिया करते का होए विचारो चित कर गावो सोहिला सिविर हो सृजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभाव का सोहिला हो बारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालिन देखेगा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार। सांबुत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल जो सजना सीसड़िया जो होवै साहब स्यों मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हार सिमरी है नानक से के आवन। रागासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेस गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बड़ाई तोय राव। विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिती वारी माहो होआ सूरजे कुरुत अनेक नान करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तूप मल आन रूप अवन चवरो करे सगल बनराए कुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनाता शब्द बाजंत तेरी रहाओ। सहसता बनैन नर नैन है तोहे को सहस मूर्त नायक तोही। सहस पाद बिमल नन एक पाद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही। समय जोत जोत है सोए किस दै चरण समय चरण होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनोवंदनो मोहयाही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग हो जाते तेरा नाए बासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिख दिहे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पन बड़ा हे का डंडौत पन बड़ा हे रहाओ। साकत हर रस साधना जानिया तलंतरों में कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पाव है
ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਸ ਡੰਡਾਹੇ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੁੰਡਾਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪੀਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਹਿਉ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ, ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਕਰਿਓ ਗਨ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੇ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵਹਿ ਰਸ, ਕਤ ਕਥਾ ਦਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ।

सदा सदा तुद ध्याय निमाण्यो के माण निताण्यो के ताण न्योट्यो की ओट न्यासर्यो का आसरा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

0: गुरदर्शन देख निहाली।
1: हम अवगुण परे एक गुण नाथ, अमृत छाड़ बिखे बिख खा। माया मोह परम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद असम हला चौथा शांत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास।

0: कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार कूड सुना कूड रूपा कूड पहनन हार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पार कूड मिया कूड बीबी खप होए खार कूड कूड़ा ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलन खार कूड मिठा कूड माख्य कूड बेपूर नानक बखाने बेंती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जरी दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तेरे प्यार नाउ सुन मन दसी है ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुक्त जाने जियो धरत काया साध के विच देख करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सबना होए दारू पा।

विचार मूर्ख पंडित हिकमत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मोख दवा जति सदा वह जुक जाने छड़ वह करवार सब को पूरा पे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तो ले जा।

0: दुख दारु सुख रोग भया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब शिव पुसवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन भेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पियो नानक ताक दास है सोई निरंज देव महला दूजा
0: ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास दे वस्य जे को जाने पियो नानकता का दास है सुई निरंजन दियो महला पहला
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे।

संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुट गया, दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर से अलख गत

तिन तरयो समुंदर रुदर खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर थायत बड सुपर सदा सब बिदरत नागर संत महाराज।

दर्शन गुरु सगल सुख सागर, हम अव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सेउ प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग, तहे मिलंत जाम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, रत की।

अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसमदी, नूर अर सहु कुर सहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, जैत सरी। महला पंजवा, घर दूजा शांत, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सलोक ऊंचा अगम अपार, प्रभ कथन न जाय अकथ।

अंत दूसर नाहि ठाव का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइए त्याय सो प्रभ सदा अपना

एक स्यो लेवलाइ अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइए। बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए। सलोक रे मन ताकौ त्याइए सब

हर नाम सिमरत मिटे किल बिख बुझी तपत अघानिया गह पुजा लीने दया कीने आपने कर मानिया।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरियायत, देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री